0: करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दाचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाहनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर

0: प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
2: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: जालिम लोशन, दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों

0: में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 एआई और रोबोटिक्स लैब, 1500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
1: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
2: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
1: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
3: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
1: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
4: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प

0: येला ने इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
2: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष 5 देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत कारीगर व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: TCPND कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देने का समाचार कई अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को जन्म से मिलेगी पेंशन। अमेरिका में वर्क परमिट खत्म तो 540 दिन का एक्सटेंशन नहीं, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। छठ पर बिहार जाने वालों की राह आसान करेगी 3 विशेष ट्रेनें, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे की तस्वीर दी है।
2: धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च 5 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 3,350 crore rupees इन लद्दाख टुडे। Union Cabinet approves productivity link bonus of 78 days for over 11 lakh railway employees. Government forms committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures. IMD forecasts heavy rain in Haryana, Punjab, Delhi, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. And in men's cricket, West Indies beat India by 24 runs in the fourth T20 match to level series 2-2. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. We have more from a correspondent.
5: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the new passenger terminal building at Kushok Bakula Rinpoche Airport, Leh, built at a cost of ₹640 crore, spread over 23,800 square meters. The modern terminal is designed to handle 35 lakh passengers annually. Prime Minister will also dedicate to the nation the 298 kilometer long Nyamo Padum Darcha Road constructed by Border Roads Organization, connecting Nyamo in Leh with Darcha in Himachal Pradesh through the remote Zanskar Valley. As part of effort to strengthen energy security and harness Ladakh's renewable energy potential, Prime Minister will inaugurate the 9-megawatt Hanu small hydroelectric project and 66 kV double-circuit Da Hanu Khalsa transmission line. Prime Minister will inaugurate India's first petroglyph

0: श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 28वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, किसानों की प्रगति और कृषि उद्यमों की नई क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस से डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी।
1: सदियों से भारत की पहचान खेती और किसानी से रही है। स्कूलों में हमें पढ़ाया गया है कि भारत कृषि प्रधान देश है। स्वाधीनता के तुरंत बाद देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी करीब 52% थी, वहीं अब यह घटकर सिर्फ 17% के करीब ही रह गई है। बेशक जीडीपी में हिस्सेदारी खेती की कम है, लेकिन खेती किसानी पर आज भी देश की बड़ी आबादी करीब करीब 48% लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय विकास में खेती किसानी के महत्व को इन आंकड़ों से मोटे तौर पर समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार भी इसे समझती है। यही वजह है कि 12 साल के अपने शासनकाल में मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं चलाईं। खेती किसानी के विकास में केंद्र सरकार के योगदान और उसकी योजनाओं को लेकर आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा की श्रृंखला के तहत आज हम खेती किसानी पर ही चर्चा कर रहे हैं, जिसका विषय है किसान से कृषि उद्यम तक, जिसमें हिस्सा ले रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के पूर्व सचिव डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। डॉक्टर बंसल और हरवीर जी, आप दोनों का स्वागत है।
2: शुक्रिया,
3: धन्यवाद।
1: आज सबसे पहला सवाल डॉक्टर बंसल आपसे,

0: किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने में मोदी सरकार ने किन किन योजनाओं पर बहुत ठीक से फोकस किया और उसमें कितना वो कामयाब रहे हैं?
1: मैं आपको एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
0: जी
1: बता सकता हूं कि पिछले 10-12 साल में जो नई स्कीम्स आई हैं और जो बढ़ावा इस गवर्नमेंट ने दिया है, वो खास करके एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं। उस टेक्नोलॉजी को हमें बहुत प्रोत्साहित करते हुए किसानों के लिए नई नई किस्में बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। और मुझे खुशी है कि पहले जैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर काम करते रहे हैं और अभी भी चल रहा है, लेकिन वहाँ रेगुलेशन के चलते हुए हम उतनी जो हमें प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। सिर्फ एक बीटी कॉटन को ही हम किसानों तक लेकर आ पाए कि जिससे हमारी पैदावार काफी बढ़ गई थी 14 मिलियन बेल से करीब 2002 में और 2015-16 तक 40 मिलियन बेल तक चली गई थी। लेकिन अब जीएम टेक्नोलॉजी के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो है जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। 2020 में इस टेक्नोलॉजी को नोबेल प्राइज मिला है। और इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जीएम एक बहुत रेगुलेटेड टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड ओवर, इंडिया में भी ऐसा ही है, उसकी वजह से हमारी बीटी कॉटन के बाद कोई और दूसरी नई किस्म अभी तक क्रॉप्स में नहीं आ पाई है। लेकिन जीनोम एडिटिंग को हमें एनकरेजमेंट मिला इतना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोसेफ्टी रेगुलेशन से इसको हमें एग्जम्पशन दे दिया। मार्च 2022 में ये हमें एग्जम्पशन मिला कि हम जो भी बायोसेफ्टी असेसमेंट की जरूरत पड़ती है जीनोम टेक्नोलॉजी में, वो साइंटिफिकली स्पीकिंग साइंस के द्वारा इस चीज को हमें एविडेंस दिया गया और साइंटिस्ट ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया। हमारी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने ये प्रपोजल दिया कि इसमें बायोसेफ्टी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट से करीब 2 साल में एक एग्जम्पशन जो होता है वो मार्च 30, 2022 को उसका एग्जम्पशन हमें मिल गया। तुरंत साइंटिस्ट लोगों को इतनी इससे एनकरेजमेंट मिला कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अगस्त 2022 में और उस प्रोजेक्ट के तहत मई 4 2025 में हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये 2 जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हमने लॉन्च कर दी है। उसके साथ साथ उसको और आगे बढ़ाने के लिए बाकी सभी करीब 40 क्रॉप्स में इस टेक्नोलॉजी के द्वारा नई किस्में बनाने के लिए जिसमें कि यील्ड भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप की बात करें या नाइट्रोजन या और वाटर यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, या फिर ज्यादातर पल्सिस में ऑयल सीड्स में जो हमें अभी तक इतने हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है उनका काम और ज्यादा आगे बढ़ाएं। इस तरह से इस काम को हमें खूब बढ़ावा मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारी प्रोडक्शन जो अभी 375 मिलियन टन के आसपास है, खास करके मैं ऑयल सीड्स और पल्सिस में हमें और मिलेट्स को भी साथ में लेकर इसमें बहुत हमें एनकरेजमेंट मिली है और हम चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी और आगे हमारे देश में बढ़ जाएगी और साइंटिस्ट लोग इसमें बहुत दिन रात से हम काम कर रहे हैं।
0: जी हरवीर जी, डॉक्टर बंसल ने तो बहुत ही एक तरह से गंभीर बात बताई और ये थोड़ा तकनीकी विषय है। जहां तक किसानों के हालात में जमीनी स्तर पर बदलाव की बात है, तो आप लंबे समय से कृषि पत्रकारिता करते रहे हैं, खेती किसानी पर आपकी गहरी नजर रही है, मोदी सरकार की वो कौन योजनाएं रही जिन्होंने किसानों की जमीनी स्थिति को, जमीनी हालत को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है? हरवीर जी
2: देखिए, उमेश जी अगर हम देखें पिछले 12 साल को हम ध्यान से उस पर जाएं तो कई सारे ऐसे कदम हैं जो कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जिनका योगदान है और काफी चेंजेस एग्रीकल्चर में आए। उसमें अगर मैं ये कहूँ कि देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट काम था वो था जो एग्रीकल्चर का जो ढांचागत जो सुविधाएं हैं जिसमें सिंचाई सबसे इम्पोर्टेंट है।
0: जी,
2: तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के जरिए सिंचाई के ऊपर फोकस किया गया और उसके बाद उसमें अगला कोशिश की गई टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन मोर क्रॉप पर ड्रॉप करके।
0: जी,
2: तो एक तो यह है कि जो हमारा कृषि का जो क्षेत्रफल था सिंचित, वो हम लोग करीब ओवरऑल जो हमारा कुल कृषि क्षेत्रफल है उसके करीब 45-50 के बीच में हम अटके हुए थे, 55% को भी शायद पार कर गया अगर आंकड़े हम लेटेस्ट देखेंगे तो ये एक इतनी बड़ी चीज है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा का मतलब होता है कि किसान को उसकी फसल का एक एश्योरेंस मिलना, के आश्वासन मिलना कि उसकी फसल पैदा होगी

0: और जब फसल को जरूरत होगी उसमें वो सिंचाई कर सकेगा। तो
1: जी
0: ये एक बड़ा कदम है कि हमने किस तरीके से जो निवेश के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल को सिंचित क्षेत्रफल के रूप में तब्दील करने की जो प्रयास हुए हैं। और उसके दो भाग जी, उसका
1: जी
0: दूसरा पक्ष जैसे मैं कहूँ, एक तो जो पहले से लंबित योजनाएं थी सिंचाई की उनको पूरा किया गया,
1: जी
0: दूसरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, क्योंकि पानी का भी एक चैलेंज हमारे सामने है। और
1: बिल्कुल
0: इसका एक ये इसमें जो गुणात्मक बदलाव होता है आमदनी में किसान की और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बड़ा बदलाव हुआ, एक तो ये मैं कहूंगा। दूसरे अगर हम जाएं कि किसान को फसल की एक सुरक्षा देना जो है उसको, रिस्क जो जिसे हम कहते हैं, जो जोखिम को एक तरीके
1: कम
0: से
1: करना।
0: कम करना और उसमें
1: जी
0: मदद करना, उसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें हर साल करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा, 17,000 करोड़ तक जो है सरकार देती है उसमें जो प्रीमियम का हिस्सेदारी, और
1: जी
0: उसमें सब किसानों को शामिल किया गया। पहले क्या था कि जो कर्जदार किसान होते थे वो होते थे, इसमें फिर सबके लिए ओपन किया और इसको ऑप्शन बना दिया गया। तो ये एक इवोल्विंग स्कीम है, उसमें अभी बहुत सारे बदलाव लगातार किए गए, जो क्रॉप वैल्यू और किस तरह से भुगतान हो, सैटेलाइट मैपिंग मॉडल्स के वो कैसे कम किया जाए, तो ये एक बड़ा इसमें, ये दूसरा मेरा ये मानना है कि इसमें एक बड़ा काम हुआ। इसके अलावा अगर हम जाएं जो छोटे किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि मैं कहूंगा
1: जी
0: 2019 में शुरू किया गया, तीन
1: हाँ
0: किस्तों में जो किसानों को, देश भर के जो एलिजिबल फार्मर है जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को उनके खाते में सीधे तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, उसका मकसद ये था कि जो छोटे किसान है उनको हम किस तरीके से आर्थिक मदद कर सकते हैं उस वक्त जब उनको जरूरत हो इनपुट की, कि
1: जी
0: उनके पास खाद की खरीदने की क्षमता हो, उनके पास बीज खरीदने की क्षमता हो। ये छोटा है बट ये एक अहम भूमिका उसकी है। और इसके अलावा मैं अभी अगर आपको बताऊंगा और कई चीजें हम आगे बात करेंगे, ये
1: जैसे
0: तीन बड़े कदम जो है। हाँ, एक और इसमें मैं कहूंगा आपको
1: किसान
0: कि
1: क्रेडिट कार्ड
0: जो
1: जो था,
0: किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि ये 2003 के आसपास शुरू किया गया था, उसमें किसानों को जो छोटी अवधि का ऋण जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो मिलता है, खास तौर से उसका मकसद भी फसल के जो उनके जो इनपुट होते हैं उसकी आपूर्ति में मदद करता है, और उसमें जो क्रेडिट की जो मतलब दिया जाता है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार देती है कि 7% पर वो किसानों को देती है, और जो किसान समय पर भुगतान कर देते हैं उनको अलग से 3% का और इंसेंटिव दिया जाता है। तो जो समय पर किसान लेकर के भुगतान कर देता है कर्ज का क्रेडिट कार्ड के तहत, उसका जो प्रभावी दर है वो 4% पे आ जाता है। तो ये कुछ चार ऐसे स्टेप्स जो है जिनकी हमने बात की वो एक बड़े बदलाव की तरफ लेकर के गए हैं। दूसरे, एक जो एमएसपी की कैलकुलेशन का तरीका था जिसमें C2 की किसानों की मांग रही है वो तो नहीं हुआ है, लेकिन A2+FL जिसमें सभी लागतें थी और उन लागतों को जोड़ के जो लागत आती है उसके ऊपर फिर फार्मर को प्रॉफिट देने की प्रक्रिया को सैद्धांतिक रूप से लागू किया गया एमएसपी तय करने में। तो ये मैं
1: जी
0: देखता हूं कि ये जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो पड़ाव इन दिनों में जो कृषि क्षेत्र के लिए जो बड़े कदम, बड़े फैसले, बड़ी योजनाएं लागू हुई हैं उनको हम इस तरह से देख सकते हैं।
1: सही कहा आपने कि ये चार प्रमुख योजनाएं हैं, हालांकि तो बहुत सारी योजनाएं हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की कृषि से जुड़ी उपलब्धियों की चर्चा बिना पीएम किसान सम्मान की पूरी नहीं हो सकती। इस चर्चा में भी उसका बार बार जिक्र आया है। इस संदर्भ में 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन की याद आना स्वाभाविक है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उस समय उन्होंने जो कहा था, आइए उसे सुनते हैं।
2: साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है।

0: देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है।
1: डॉक्टर बंसल, जो बायोटेक किसान और बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है या नीम कोटेड यूरिया की, उसने किसानों की स्थिति को बदलने में और खेती में उपज को बढ़ावा देने में किस तरह से भूमिका निभाई है, और क्या इससे किसानों की जमीनी हालात बदलने में बड़ी मदद मिली है या अभी देर लगेगी?
2: नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुई, मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी, और अभी ये जो आप बायोटेक किसान की जो बात कर रहे हैं, ये एक नई स्कीम है जो 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने शुरू की, और ये बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को ये है कि इसमें एक साइंटिस्ट और किसान, वैज्ञानिक और किसान की पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि ये जो बायोटेक स्कीम है, बायोटेक किसान स्कीम, ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे जितने अलग रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, ये जो हमारे छोटे किसान भाई बहन हैं उनसे जोड़ देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल सकता है। और खास करके जो इसमें ज्यादा तरह का जो काम हो रहा है वो ग्रास रूट लेवल पर जो चैलेंजेस हैं हमारे पानी को लेकर, सॉयल की स्ट्रक्चर या सॉयल को की हेल्थ को लेकर, या सीड या मार्केट की एक्सेस को लेकर जो इसमें जो चैलेंजेस हैं ग्रास रूट लेवल, जो फार्मर्स इसको फेस करते हैं, उसके ऊपर इसमें ज्यादा फोकस है। और इसको चलते हुए करीब 1,00,000 फार्मर्स को इसमें यील्ड इम्प्रूवमेंट जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स वहां बायोटेक किसान के तहत लगाए गए हैं, उसमें करीब 15% से 30% तक की बढ़ोतरी मिली है, तो 1,00,000 फार्मर्स को। और खुशी की बात यह है कि इसमें स्पेशली वुमेन फार्मर्स को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर ज्यादा एम्फेसिस है कि जो हमारी वुमेन फार्मर्स है उसको इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और इसमें और प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी और चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम और आने वाले समय में बहुत ज्यादा इसको किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।
1: डॉक्टर साहब, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर भी रहे हैं, एक तरफ भारत इस तरह से तकनीकी क्रांति के जरिए, तकनीक और खाद के, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के जरिए खेती कर रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने एक और योजना शुरू की है जो हम कहते हैं जिसे नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग का, जिसे हम लोग जीरो बजट भी खेती के नाम से जानते हैं। भारत में जीरो बजट खेती की बहुत चर्चा होती है, आजकल ऑर्गेनिक खेती के नाम से भी ये बहुत मशहूर हो चुकी है। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भी शुरू किया है, इसे भी मोदी सरकार की कृषि उपलब्धियों का एक सोपान माना जाता है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: भारत में खेती को टिकाऊ बनाने, मिट्टी की सेहत सुधारने और किसानों की लागत कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत किसानों को ऐसी कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों पर निर्भरता कम की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी थी। इसके लिए कुल 2,481 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 1,584 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 897 करोड़ रुपए है। प्राकृतिक खेती में स्थानीय संसाधनों, पशुधन और खेती से जुड़ी पारंपरिक जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गोबर और गौमूत्र से जीवामृत और बीजामृत जैसे प्राकृतिक इनपुट तैयार किए जाते हैं। जीवामृत का इस्तेमाल मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जबकि बीजामृत का उपयोग बीजों के उपचार में किया जा सकता है। इस पद्धति का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना, खेती में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाना और बाहर से खरीदी जाने वाली कृषि सामग्री पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद करना है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के जरिए जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मिशन के तहत किसानों को प्रशिक्षण और व्यावहारिक जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में प्रदर्शन की व्यवस्था की जाती है। किसान इन स्थानों पर प्राकृतिक खेती के तरीके समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि

0: अपनी फसल तथा मिट्टी की जरूरत के अनुसार इन तरीकों को कैसे अपनाया जाए। इसके अलावा जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने का भी प्रावधान है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाली सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। कृषि सखियों और प्रशिक्षित किसान मार्गदर्शकों के जरिए भी किसानों को जानकारी और तकनीकी सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 4,000 रुपए की प्रोत्साहन सहायता 2 वर्षों तक देने का प्रावधान है। इस सहायता का इस्तेमाल प्राकृतिक खेती से जुड़े गतिविधियों, सामग्री तैयार करने और जैव इनपुट संसाधन केंद्रों से सामग्री प्राप्त करने में किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय की अगस्त 2026 में जारी जानकारी के अनुसार मिशन के तहत 24,031 समूहों में 11,81,000 हेक्टेयर शामिल किया गया है। इससे 24,69,000 किसानों को लाभ पहुंचने की जानकारी दी गई है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी मिशन में प्रावधान किए गए हैं। इनमें सरल प्रमाणन व्यवस्था और साझा ब्रांडिंग शामिल है। इन प्रयासों से उत्पादों की पहचान बनाने और किसानों को बाजार से जोड़ने में सहायता मिल सकती है। हालांकि प्राकृतिक खेती को सफल बनाने के लिए किसानों को सही प्रशिक्षण, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सलाह और उपज के लिए उचित बाजार मिलना जरूरी है। खेती के तरीके में बदलाव करते समय मिट्टी, मौसम और फसल की जरूरतों को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से खेती की ऐसी पद्धतियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है जिनमें उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की सेहत और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाए।
1: ये दोनों परंपराएं एक साथ चल रही हैं, तो इन दोनों में तारतम्य कैसे बिठाया जा सकता है और किस तरह से ये किसानों के लिए लाभप्रद हो सकता है, आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे?
2: ये किसानों के लिए लाभप्रद हो सकता है और दोनों साथ साथ चल सकती हैं। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां हम ये जो नेचुरल फार्मिंग है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे हमारे सिक्किम की अगर हम बात करें या हिमाचल में बहुत सी और स्टेट्स हैं उसकी अगर हम बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं एरियाज हैं जिसकी हम जिसमें हम बात करें। लेकिन जहां हमें हाई प्रोडक्शन जोन जो हमारे हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है या और हमारे मध्य प्रदेश में है या और हमारे महाराष्ट्र गुजरात में है, वहां जो अगर हमें हाई प्रोडक्शन लेनी है तो मैं तो ये समझता हूं कि नेचुरल फार्मिंग एक अपने भारतवर्ष में कहीं जो अलग स्टेट्स में हो रही है और इन एरियाज में हम लोग जो नई तकनीक को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों स्कीम्स का भारतवर्ष के अपने फार्मर्स को इसमें फायदा मिल सकता है। और साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो नई टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरह की हम प्रोडक्ट या वैरायटीज बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जबकि नेचुरल फार्मिंग यही है कि जिसमें हम कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें या ना करें, तो हम ये भी एक तरफ से रिसर्च चल रही है कि बायो फर्टिलाइजर्स या बायो पेस्टिसाइड्स को भी हम जितना ज्यादा उसको यूज करें उससे सॉइल की स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है, सॉइल में कार्बन कंटेंट इंप्रूव होता है, जो कि एक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ये भी एक हिस्सा है कि हम सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को बढ़ाएं। तो उसमें भी ये नई जो टेक्नोलॉजी है उससे उससे फायदा होगा। और जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जीनोम एडिटिंग जो बात कर रहे हैं उसमें हम उसी तरह की क्रॉप्स को बनाना चाहते हैं जिसमें कम से कम पेस्टिसाइड यूज हो, कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज हो और कम से कम वाटर से या पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अगर हम बात करें, तो दोनों टेक्निक्स में मुझे लगता है कि हमारे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। और मुझे ये उम्मीद है कि प्रोत्साहन जो दिया गया है नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ में टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना मेरे लिए बहुत अच्छा है और समझता हूँ बहुत जरूरी भी है।
1: हरवीर जी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई थी, मोदी सरकार ने शपथ लिया था, तो उस समय उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। वह लक्ष्य क्या हासिल किया जा चुका है और वो किस तरह से हासिल किया गया है?
3: देखिए, ये जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो घोषणा थी
1: जी,
3: वो प्रधानमंत्री ने 2016 के आसपास की थी कि हम 5 साल में करेंगे, 2022 उसका लक्ष्य रखा गया था। उसके लिए एक अशोक दलोई जी भारत सरकार में अधिकारी रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सारी रिपोर्ट अपने सबमिट की और इसी तरह से उसका कोई एग्जैक्टली कोई इवेल्युएशन किस पैरामीटर के हिसाब से करेंगे ये अभी ऐसा तो संभव नहीं होता, क्योंकि तमाम किस्म की फसलें हैं, तमाम किस्म के उत्पाद हैं। तो उसमें ये जरूर है कि जो 4.5% की दर जो एग्रीकल्चर ग्रोथ में हासिल की गई है

0: वो अनप्रेसिडेंटेड थी। इसके पहले के जो दशक रहे हैं उनमें 4% से नीचे की ही जो विकास दर कृषि और संबंधित क्षेत्र जो है उसमें हासिल की गई थी। तो ये एक बड़ा बूस्ट रहा है एग्रीकल्चर के लिए ग्रोथ का लंबे समय के बाद, क्योंकि इवन ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी एवरेज जब 10 साल का निकालते हैं वो इससे थोड़ा नीचे ही था। जो नंबर्स अवेलेबल है हमारा सरकार के कृषि उत्पादन और GDP को लेकर के, तो
1: जी
0: ये तो बिल्कुल सही है कि तमाम सारे फसलों के दाम बढ़े हैं, जिसमें खासतौर से जो दालें हैं और तिलहन हैं उनके MSP में काफी बढ़ोतरी हुई है। खाद्यान्नों के जो MSP है वो भी तेजी से बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम सारे जो दाम है वो जब किसानों को मिलता है तो उनकी आमदनी में एक बड़ा बदलाव आया है। उसमें ICAR का जो IRI संस्थान है उन्होंने एक स्टडी भी की थी इसके बारे में, जो है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि किस तरीके से किसानों की आमदनी में लक्षित दिशा में बढ़ोतरी हुई।
1: डॉक्टर बंसल, मोदी सरकार की एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन थ्रू NMEO, जिसमें तिलहन और दालों के जो फसल है उसकी प्रमोशन की बात होती है, उसको प्रमोशन करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो क्या इसमें भी कोई बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से रिसर्च हो रहे हैं, क्या जीनोम बदलने की तैयारी हो रही है? क्योंकि भारत में खासतौर पर दलहन की कमी रहती है और भारत का एक पूरा हिस्सा जो है वो दलहन फसलों पर, तो इसमें दलहन की फसलों का बहुत ज्यादा मांग रहती है, बहुत ज्यादा उनकी खपत रहती है। तो भारत को हर साल दाल की आयात के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, दाल का आयात करना पड़ता है, खासतौर पर ब्राजील और कनाडा जैसे देशों से। तो हमारे यहाँ दलहन की फसलों को उनके जीनोम को विकसित करने के लिए भी कोई काम हो रहा है क्या?
2: हाँ, दलहन की फसलों पर पूरा भारतवर्ष का जितने भी हमारी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं ICAR में, खास करके जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, दलहन पर ही फोकस जो रिसर्च करता है, और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी जैसे IRI में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, वहां भी PGNP पर जो अरहर दाल है उस पर बहुत तरह की रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी एरिया में चल रही है। लेकिन यहाँ मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो तरह की टेक्नोलॉजी है जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, एक होता है कि हम GM फसलें तैयार करते हैं जो BT कॉटन जैसे तैयार हुई, दूसरी जैसे मैंने जीनोम एडिटिंग की बात की जहां हम जीनोम में बदलाव करते हैं, खुद जो जो क्रॉप है उसी में हम बदलाव करते हैं। तो PGNP को लेकर जो हमारे यहाँ पॉड बोरर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कीड़ा खा जाता है और उससे प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, तो उसके लिए एक GM PGNP अरहर उसके जो जीनोम में बदलाव करके जिसमें एक बैक्टीरिया से उसमें जीन डाला है जैसे कि BT कॉटन में डाला गया था, और वो अभी हमारे रेगुलेटरी सिस्टम में, हमारा एक सिस्टम है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, वहां बायोसेफ्टी रेगुलेशन के लिए वो काम आगे प्रोग्रेस हो रहा है। और इन द मीनवाइल जो हमारे बाकी जो पल्सिस की जो प्रोडक्टिविटी है वो करीब 1 टन पर हेक्टेयर है जो कि बहुत कम है, और उसको बढ़ाने के लिए हम लोग, क्योंकि एरिया बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है जबकि एरिया बढ़ाने से हमारे यहाँ दलहन की प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन अभी जिससे प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा दी है, नीति आयोग ने दलहन पर और तिलहन पर रिपोर्ट जारी की हैं स्पेशली पिछले साल ही, जिसमें ये बताया गया है कि हम 2030 तक किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को भी साथ लेते हुए क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज जो और हमारी एफिशिएंट वैरायटीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज, खास करके दलहन और तिलहन दोनों में ही अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उसमें हम इनको 1 टन से आगे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 40 क्रॉप्स में हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट बना है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, जिसमें जीनोम बदलाव की बातचीत बराबर हो रही है, उसमें 40 क्रॉप्स में जो मेजर एम्फेसिस है वो दलहन पर है, तिलहन पर, दोनों पर है। तिलहन को साथ लेते हुए मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं कि हम लोग करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का एडिबल ऑयल हर साल इंपोर्ट करते हैं
1: जी,
2: तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको चलते हुए हमने एक GM मस्टर्ड भी, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड भी बनाया है जिसकी प्रोडक्टिविटी 25 से 30% ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो हमारे यहाँ अभी रेगुलेटरी सिस्टम से क्लियरेंस मिली है, लेकिन अभी वो लीगल रिव्यू में है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसके इसको सपोर्ट कर रही है कि हम उसको जल्दी से जल्दी किसानों तक लेकर आएं, ताकि इस नई टेक्नोलॉजी का जब तक हम फायदा नहीं लेंगे हम बहुत ज्यादा आगे शायद बढ़ना मुश्किल होगा। तो मेरा एक ये भी एक पॉइंट रहेगा कि जबकि भारत की बहुत सपोर्ट है, नई नई स्कीम्स हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो कर रहे हैं, 500 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो किस्में तैयार हो चुकी हैं, जो हमें खेतों में जो हमारी बायोसेफ्टी रिसर्च ट्रायल्स हो चुकी हैं, उसको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए अगर मौका मिलेगा तो फार्मर्स किसान

0: के लिए और देश के लिए सेल्फ एफिशिएंसी की तरफ बढ़ने के लिए, विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए बहुत फायदा।
1: केंद्र सरकार की कृषि उपलब्धियों में हाल ही में एक और योजना जुड़ी है, नमो ड्रोन दीदी। आइए सुनते हैं इसी योजना पर एक रिपोर्ट।
2: खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे किसानों को कृषि सेवाएं दे सके और अपनी आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाश सके। केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना का लक्ष्य वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराना है। इनका प्रमुख इस्तेमाल खेतों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाना है। योजना के तहत चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए लागत का 80% तक केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 8,00,000 रुपए है। शेष राशि की व्यवस्था के लिए पात्र समूहों के क्लस्टर स्तर के संघ कृषि अवसंरचना निधि के तहत ऋण ले सकते हैं। इस ऋण पर निर्धारित शर्तों के अनुसार 3% ब्याज सहायता का प्रावधान भी है। ड्रोन उपलब्ध कराने के साथ साथ इसके संचालन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। चयनित समूह की एक सदस्य को ड्रोन पायलट का 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, ड्रोन चलाने का अभ्यास और छोटी मोटी मरम्मत तथा रख रखाव की जानकारी शामिल है। समूह की दूसरी सदस्य या परिवार के किसी सदस्य को ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। खेती में ड्रोन का इस्तेमाल करने से खेतों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय में करने में मदद मिल सकती है। इससे किसानों को कृषि कार्यों के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। किसानों को हर बार अपना ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं होती। वे जरूरत के अनुसार महिला स्वयं सहायता समूहों से किराए पर कृषि सेवाएं ले सकते हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण महिलाओं को तकनीक आधारित रोजगार से जोड़ना है। महिला समूह ड्रोन के जरिए किसानों को सेवाएं देकर आय अर्जित कर सकते हैं। योजना को लागू करने में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग और प्रमुख उर्वरक कंपनियों की भूमिका है। इन संस्थाओं के बीच समन्वय के माध्यम से ड्रोन की उपलब्धता, प्रशिक्षण और कृषि सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि मंत्रालय की फरवरी 2026 में जारी जानकारी के अनुसार प्रमुख उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में स्वयं सहायता समूहों को कुल 1,094 ड्रोन वितरित किए थे। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत दिए गए थे। ड्रोन से मिलने वाले लाभ को बढ़ाने के लिए नियमित काम, उपकरणों का रखरखाव, परिवहन की सुविधा और किसानों को उचित लागत पर सेवाएं मिलना जरूरी है। महिला समूहों को पर्याप्त कृषि कार्य उपलब्ध होने से ड्रोन का उपयोग बढ़ाने और आय अर्जित करने में मदद मिल सकती है। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिए कृषि में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को एक साथ बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना और किसानों तक आधुनिक कृषि सेवाएं पहुँचाना है।
1: हरवीर जी, एक चीज और है कि जो प्रधानमंत्री ने श्री अन्न की बात की, मोटे अनाजों को एक तरह से हम लोगों ने जो कृषि क्रांति हुई है, हरित क्रांति जो हुई है, उसको भुला दिया था। और मोटे अनाजों के साथ एक बड़ी बात यह है कि उसमें कीटनाशक और रासायनिक खादों की जरूरत कम पड़ती है, पानी की भी कम जरूरत पड़ती है। तो ये किस तरह से चेंज ला रहा है भारतीय कृषि की दशा को, दिशा को?
3: असल में ये बात सही है कि जो हमारे मोटे अनाज हैं, जिनको हम पहले मोटे अनाज कहते थे, उसके बाद उसको कैटेगराइज किया गया। जो मिलेट्स हैं उसमें श्री अन्न जो है उनका एक कैटेगरी ठीक से परिभाषित की गई और उनका एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। और ये न्यूट्रिशियस फूड है, मतलब एक तरीके से ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर भोजन है। और इसीलिए उसको प्रमोट करने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी मनाया। उसका नतीजा ये हुआ कि इस तरीके के जो उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़ी, उनका जो उनसे बनने वाले जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनकी संख्या बढ़ी। और इनके जो उगाने वाले लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर ये मार्जिनल लैंड्स जहां पर है, जहां बहुत ज्यादा सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, वहां पर इस तरीके के ये खाद्यान्न जो है उनका

0: उत्पादन होता रहा है, तो उन किसानों के लिए ये एक बड़ा मौका लेकर के आया है। और अगर आप देखेंगे कि हमारा जो भोजन है उसमें काफी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, और उसमें इस तरीके के जो अन्न है उनकी जो मात्रा है बढ़ी है, और उनको प्रति लोगों का रुझान आया। इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से इनको बेहतर पोषक तत्वों के रूप में एक तरीके से पेश किया गया और कैंपेन चला गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर, तो उसका फायदा किसानों को मिला। आपकी बात सही है कि इस तरह के जो अन्न है उनमें, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा सिंचित क्षेत्र में नहीं होते, और उसमें जो उर्वरक है जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनकी भी जरूरत कम पड़ती है, और कीटनाशकों की लगभग ना के बराबर हो जरूरत होती है, उसका इस्तेमाल ही नहीं होता ज्यादातर मामलों में, तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा है। और ये क्योंकि उससे आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी घटती है, अगर जिसमें आप ज्यादा उर्वरक और ज्यादा रसायन इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी लागत भी कम रहती।
1: अब समय चर्चा की इजाजत नहीं दे रहा है। भारत की कृषि और किसानों की हालत बदलने की दिशा में मोदी सरकार की योजनाओं पर इस सार्थक चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया,
2: धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 28वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, किसानों की प्रगति और कृषि उद्यमों की नई क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस से डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालपसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि हम 31/3/2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। मुझे आनंद है आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई, जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
4: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत

0: वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
2: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड है सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
3: सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
4: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
3: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूरदराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा।

0: आकाशवाणी समाचार चंडीगढ़।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
2: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ಹೇಳಿ.
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार. मेरे सामने बैठी हैं हंसती मुस्कुराती सी आरती.
2: मंदाकिनी जी आपको और साथ में सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार.
1: नमस्कार. कैसी हो आरती?
2: बहुत बहुत अच्छी हूँ क्योंकि ये समय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं. पूजा पाठ और साथ में इतना बढ़िया जो गरबा सब तरफ हो रहा है, चकाचौंध रोशनी ही रोशनी है, झालरें लगा रखी है, लोगों ने सजावट इतनी अच्छी कर रखी है हर सोसाइटी में हर घर में कि मतलब बहुत अच्छा लगता है. और जो हवन की जो सुगंध आती है ना, सच में एकदम बहुत अच्छा लगता है.
1: सबसे बड़ी बात तुमने कहा कि जो हम जब पूजा या अर्चना करते हैं, जैसे कहते हैं हम एक विश्वास किसी शक्ति को मान के जब चलते हैं और पूजा अर्चना में लीन होते हैं तो एक अदम में शक्ति हमें प्राप्त होती है और हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं. नहीं तो जिंदगी कई बार बड़ी सुस्त सी चलने लगती है, लेकिन इन दिनों हर इंसान जो है अपने आप में एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहा है.
2: क्योंकि त्योहार की जो एक खासियत है ना वो यही है कि आपको एक अलग सी एनर्जी एक अलग सी ऊर्जा से भर देता है वो. आप बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, नौ व्रत रखते हैं कुछ लोग तो लेकिन ऐसा लगता है ना कि उनके अंदर एनर्जी की ऊर्जा की कोई कमी नहीं बल्कि और आ गई ऊर्जा
1: बढ़ गई है. बिल्कुल सही बात कहा आपने कि नौ दिनों तक जब हम किसी तरह का उपवास करते हैं और माता को याद करते हैं और हमें लगता है कि जो रोजमर्रा का भोजन है उसे थोड़ा सा हम त्याग देते हैं और फलाहार की ओर बढ़ जाते हैं तो एक अलग किस्म की शांति.
2: और हम तो यही कहेंगे आप फलाहार ही ले, बहुत ज्यादा तला भुना क्योंकि रहता है ना कि जब व्रत है तो बहुत तली तली चीज ऐसी चीजें बनती हैं. आलू भी बनाएंगे तो तल तल के एकदम से बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा तला हुआ चीजें मत खाइए, इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है.
1: कई बार क्या होता है फलाहारी आटे की हम पूड़ियां तल लेते हैं, मछलियां बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं. बाजार में भी कई शहरों में बाजार में भी फलाहारी मिर्ची बड़े फलाहारी मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई व्रत है तो इन दिनों इन्हें ही खाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपने व्रत किया उपवास किया है तो थोड़ा सा इन चीजों से दूरी बनाए रखिए और फलाहार करिए,
2: इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे पूरे और एक ऊर्जा भी आपको बहुत अच्छी से महसूस होती रहेगी. तो क्योंकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है तभी हम इस त्योहार का मजा भी ले सकते हैं और डांडिया खेल सकते हैं, खूब मजे से गरबा खेल सकते हैं.
1: सही बात है, जो है सब तरफ जो है डांडिया की धूम मची हुई है
2: जी हां,
1: और बड़ा अच्छा लग रहा है इन दिनों. और अब अच्छा लगेगा हमें ये जानकर कि आज हमारे श्रोताओं के साथ हम क्या बातें करने वाले हैं.
2: तो आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है, पहले तो हम लेके आए हैं माता पिता से दूरी बनाते हुए बच्चे, जो आजकल ट्रेंड से चल गया ना कि बच्चे जहां थोड़े से टीनेज में भी यहां तक ही आ जाते हैं 17-18-19 साल के हुए नहीं कि उनको लगता है अब हम अकेले रहे, अब हम क्यों किसी बंदिश में रहे, उनको लगता है माता पिता के साथ रहना यानी बंदिश में रहना. तो अलग रहने की उनको इच्छा होने लगती है कि हम अलग रहें अपने तरीके से रहें और बाहर हम अपना जॉब करें या कुछ भी करें. तो ये जो आज देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है. और साथ ही हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री की, उसके अंदर हम लेकर आएंगे आज बिरू बाला रभा जी के बारे में बात करेंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे
1: जो समाज सेविका है,
2: समाज सेवा में जिनका नाम है. और साथ ही हम बात करेंगे मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे अपने ग्रामीण अंचल लोकोक्तियां तो हम बहुत सारी जानते हैं लेकिन जो ग्रामीण ठेठ ग्रामीण वाली

0: होती हैं वो लोकोक्तियाँ कौन सी हैं।
1: अरे तो हमारी ग्रामीण श्रोता जो हमें सुन रही हैं वो तो बता दें,
0: बिल्कुल बताइए
1: किस तरह की लोकोक्तियाँ बोली जाती हैं,
0: कौन से गांव में, या बहुत सारे लोगों को मालूम होता है ना कि कौन की गांव की जो लोकोक्ति है बहुत प्रसिद्ध है, उनको ऐसी कौन सी पता है जो बहुत प्रसिद्ध है उसके बारे में आप बताइए। और साथ ही हम बात करेंगे उपयोगी टिप्स की, क्योंकि देखिए त्योहार चल रहे हैं और जब गरबा होता है ना तो जब सब महिलाएं ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां सब की सुंदर सुंदर सच के आती हैं, तैयार होकर आती हैं ना, लगता है कि सब अप्सराएं जमीन पर उतर आई हैं, तो वो उसके लिए हम लेकर आए घरेलू नुस्खे जो रखेंगे सुंदर त्वचा आपकी।
1: अरे आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं लगेगा
0: है ना,
1: तो कैसे रखें इस त्वचा को खूबसूरत, इस पर कुछ उपयोगी टिप्स हमारे श्रोता हमें देंगे।
0: बिल्कुल बताइए आप हमें अपने, क्योंकि उनको पता है भाई गर्भा में ऐसे ही थोड़ी ना अपने शांति
1: चमकती त्वचा के साथ जब हम जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है ना। तो चलिए अब एक गाना हम सुन,
0: बिल्कुल एक भक्ति भावना से भरा हुआ गीत सुनते हैं, आइए।

0: आप हमें
1: अच्छा
0: अपने, क्योंकि उनको पता है भाई गर्बा में ऐसे ही थोड़ी ना अपनी शान
1: बिल्कुल चमकती
0: दिखाते हैं।
1: चमकती त्वचा के साथ जब हम जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है
0: बिल्कुल।
1: ना। तो चलिए अब एक गाना हम सुन,
0: बिल्कुल एक भक्ति भावना से भरा हुआ गीत सुनते हैं, आइए।

0: बहुत अच्छा गीत था आरती, और माता का ध्यान तो हम इन दिनों कर ही रहे हैं। वैसे तो हर दिन माँ हमारे ख्यालों और ख्वाबों में रहती ही है ना, लेकिन इन 9 दिनों में खास अर्चना हम करते हैं। और देखिए, तुमने कहा कि आजकल जो बच्चे हैं वो माता पिता से दूरी बना रहे हैं, या उनके मन में एक समय बाद आता है कि वे अलग रहना चाहते हैं, दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा माता पिता के मन को तोड़ देती हैं।
1: बिल्कुल, उनको लगता है ना कि अब हम अपने जो अपने हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे हर वक्त, क्योंकि बचपन से उनको पाला, उनको उनके साथ में,
0: और उनका अधिकार होता है उन पर, उनके लिए एक फर्ज बनता है, बच्चों के लिए, बच्चों के मन में होना चाहिए कि माता पिता के साथ हमें रहना है। और भले ही उनका विवाह हो गया है, पत्नी हो गई है, पत्नी आ गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन अगर वो माता पिता से अलग रहने का सोचते हैं तो माता पिता की जो सारी ख्वाहिशें हैं, जो बच्चों के लिए बुने हुए ख्वाब होते हैं, वो टूट जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ रिश्ता जो है माता पिता का होता है, और ये ऐसा रिश्ता है जिसमें बच्चे की मुस्कान के लिए माँ अपनी थकान भूल जाती है, और जो पिता है वो अपनी परेशानियों को अनदेखा करके परिवार की खुशियों के लिए भी निकल पड़ते हैं सुबह से शाम तक। और जिस बच्चे की पहली आवाज पर माँ दौड़ी आती है, आज उसी बच्चे की आवाज सुनने के लिए माँ को कई बार फोन करना पड़ता।
1: बिल्कुल, और जिस पिता की उंगली पकड़कर बच्चा चलना सीखता है, उम्र के एक पड़ाव पर उसी पिता को बच्चे के साथ 2 कदम चलने के लिए उससे समय मांगना पड़ता है। और कभी कभी तो घर में सब साथ में रहते हैं लेकिन बातचीत केवल इतनी होती है, खाना खा लिया, हाँ पैसे चाहिए, भेज दीजिए, बस बातचीत खत्म।

0: रिश्ता ऑनलाइन है भावना है ऑफलाइन।
1: बिल्कुल सही कहा आरती। आज की दुनिया पहले से बहुत बदल गई है। पढ़ाई की बात करें, नौकरी, प्रतियोगिता, महानगरों की जो भागदौड़ है और फॉरेन में बसने की जो ये चाहत है, इन सब ने परिवारों की जो जीवन शैली है उसको बिल्कुल ही बदल दिया है। पहले कई पीढ़ियां एक ही घर में रहती थी, दादा दादी की कहानियां होती थी, माँ की रसोई के किस्से, पिता की सीख और भाई बहनों की नोक झोंक और रोजमर्रा की जिंदगी का ये हमारा हिस्सा होता था। लड़ाई झगड़ा, मैं बच्चे भाई
0: लड़ते झगड़ते हम लोग बड़े हुए
1: हैं
0: और वो चीज एक अलग ही होती थी। और आज जो छोटे परिवार हैं, बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं, ऐसे में माता पिता से जो दूरी हो जाती है ना, वो हमेशा भावनात्मक दूरी का संकेत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप, हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने के लिए या किसी चीज के लिए जाना पड़े, लेकिन वो दूरी सिर्फ ऐसी होनी चाहिए कि हाँ आप गए लेकिन मन से दूर नहीं हुए।
1: हाँ,
0: लेकिन आजकल क्या है ना कि बच्चे मन से भी दूर होते जा रहे हैं। कई बच्चे दूर रहकर भी अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते हैं। आज मोबाइल पर हमारे सैकड़ों संपर्क हैं, सोशल मीडिया पर हजारों मित्र हैं, लेकिन कभी कभी अपने माता पिता के पास बैठकर 10 मिनट बात करने का भी हमारे पास समय नहीं होता।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और हम दुनिया भर की तस्वीरों पर अपनी राय देते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, खुश होते हैं, लेकिन माँ की बात पर सिर्फ इतना कहते हैं, मम्मी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाद में बात करता हूँ। खासतौर से बेटे, उनके लिए ज्यादा हम कहेंगे कि वो बात कब आता है उनका, इसका तो जवाब न तो माँ के पास होता है न उस बच्चे के पास होता है। और एक बड़ा घरों में एक आरती और बड़ा दिलचस्प दृश्य भी देखने को मिलता है कि माँ कहती है, बेटा जरा मेरे पास बैठ जा, तुझसे कुछ बात करनी है, तो बेटा कहता है, मम्मी 5 मिनट बस।
0: हाँ, और मजे की बात यह है कि माँ के 5 मिनट में जो माँ मांगती है, 5 मिनट में चाय भी बन जाती है, 2 बार गैस बंद हो जाती है, पड़ोस की खबर आ जाती है, लेकिन बेटे के 5 मिनट में मोबाइल की बैटरी 10% और कम हो जाती है। और जब माँ पूछती है किससे इतनी बातें कर रहे हो, तो जवाब मिलता है बस दोस्तों से। माँ मनी मन सोचती है, काश मैं भी अपने बेटे की दोस्ती होती।
1: हाँ, दोस्त बनते हैं माता पिता, लेकिन बच्चे जो है कहाँ बात करना पसंद करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है।
0: बिल्कुल।
1: और ये बातें सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती। अक्सर माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम हमारी बात भी नहीं मानते। तो इन बातों के पीछे जो है उनकी चिंता है, उनके अनुभव है, सुरक्षा की भावना है, ये छुपी होती है। मगर जब बातचीत बार बार शिकायत या में बदल जाती है, तो बच्चे भी अपनी बात कहना बंद कर देते हैं। ये दूसरा सिक्के का दूसरा रूप है।
0: बिल्कुल,
1: तो कई बार ऐसा भी होता है।
0: जी बिल्कुल। और याद रखिए, प्यार में अधिकार हो सकता है, लेकिन संवाद में सम्मान भी बहुत जरूरी है। बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए और माता पिता को भरोसा। दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर नई पीढ़ी का अपना अपना समय होता है, अपनी चुनौतियां होती हैं और अपने सपने होते हैं। उसी तरह माता पिता के पास जीवन का अनुभव होता है, जिसे अनसुना करना भी अच्छा नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है। और समस्या पीढ़ियों के अलग होने में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने की जो कोशिशें हम बंद कर देते हैं ना, वो बहुत दिक्कत है। रिश्ते में दूरी झगड़े से नहीं है, जो दूरी है हमेशा झगड़े से नहीं आती है। कई बार क्या होता है, सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन बातचीत धीरे धीरे कम हो जाती है। बच्चे अपनी खुशियों में, परेशानियों में माता पिता से साझा करना उस बात को बंद कर देते हैं, और घर में एक सन्नाटा सा पसर जाता है।
0: बिल्कुल। और माता पिता अपनी भावनाएं बताने के बजाय चुप रहना शुरू कर देते हैं, और फोन पर बातचीत केवल जरूरी कामों और पैसों तक सीमित हो जाती है। परिवार के जो सदस्य हैं, एक साथ होते हुए भी एक दूसरे के लिए समय नहीं निकालते। छोटी छोटी बातों पर संवाद करने के बजाय क्या करते हैं, वो नाराजगी होने लगती है, गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। और हालांकि इन संकेतों का अर्थ ये नहीं कि हर परिवार में रिश्ता बिगड़ ही रहा है।
1: हाँ नहीं, ऐसा नहीं, रिश्ता नहीं बिगड़ रहा, लेकिन खुशियां भी नहीं आ रही, मन खुश नहीं रहता है, मन भारी रहता है। तो कभी पढ़ाई का तनाव हो सकता है, कभी नौकरी का दबाव हो सकता है, व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती है, पुराने मतभेद भी जो है हमारे संवादों को, बातचीत को प्रभावित करते हैं आरती। इसलिए तुरंत आरोप लगाने के बजाय प्यार से हमें पूछना चाहिए कि क्या बात हो गई, सब ठीक तो है ना, क्या तुम किसी परेशानी से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, या मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी किसी को समाधान नहीं, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है, जो हमें नहीं मिलता।
0: बिल्कुल। और इन छोटे सवालों में अपनापन छिपा होता है। दूरी को केवल किलोमीटर से मत मापिए कि वो उतनी दूर है, उतने किलोमीटर दूर है। और बच्चे दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं, वो नियमित फोन कॉल, वीडियो कॉल, त्योहारों पर मुलाकात और स्वास्थ्य या रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखकर अपने माता पिता से जुड़े रह सकते हैं। जरूरी है माता पिता भी अपनी व्यस्तता को बनाए रखें, कि ऐसा नहीं कि बस आप खाली बैठे रहें, तो फिर आपको और चिंता होने लगेगी और लगेगा कि कोई आए साथ में। तो अपने मित्रों से मिलना, रुचियों को अपनी जो आपके शौक हैं उसको समय देना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: अपने आप को बिजी रखना,
1: बिजी रखना। लेकिन वही है आरती कि बिजी रखने के चक्कर में भी कई बार हम रिश्तों से दूर हो जाते हैं, हमें लगता है हम बिजी हैं, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। तो इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि हम अपना जीने का अंदाज खो दें।

0: या जो सुख शांति है, ठहराव भी जिंदगी में बहुत जरूरी है ना, ठहराव होना बहुत जरूरी। तो बच्चों में क्या हो गया, ठहराव नहीं रहा तो जुड़ाव भी नहीं रहा, है ना। अपनी पूरी खुशी केवल उनकी अपने बात पर निर्भर रहती है कि वो किससे खुश रहते हैं। तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी रिश्ते में डर नहीं होना चाहिए, अपमान या लगातार नियंत्रण करना, किसी को नियंत्रण में कर लेते हैं, कंट्रोल में करना जिसे कहते हैं, या हम दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये साथ रहने से रिश्तों की सफलता नहीं मानी जा सकती। बल्कि एक दूसरे की रिश्तों में क्या होता है कि उनकी सीमाओं का ध्यान रखना, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना, ये सभी ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर ये सोचते हैं कि माता पिता तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, उनकी शिकायतें, उनकी सलाह, उनकी आवाज, सब कुछ हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहेगा। लेकिन सच ये है कि समय किसी के लिए भी ठहरता नहीं है, और बचपन में जो हाथ हमें गिरने से बचाते थे, उन्हें उम्र के साथ हमारे धैर्य और सहारे की जरूरत भी हो सकती है। और जो माता पिता कभी हर सवाल का जवाब देते थे, वो भी आज के बदलते समय में अकेलापन, असुरक्षा या अपनी उपयोगिता को लेकर चिंता महसूस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह बच्चों को भी समझे जाने का, सम्मान पाने का और अपने फैसले लेने की जगह होनी चाहिए। इसलिए रिश्तों को बचाने का केवल क्या तरीका है कि त्याग या उनकी बातों को मानना नहीं है, बल्कि संवाद करना, संवेदना जताना, प्यार मोहब्बत, है ना, जिसे कहते हैं ना सहानुभूति, ये सभी होना चाहिए। और बच्चों, माता पिता को भी बच्चों की दुनिया को समझना होगा, और बच्चों को भी समझना होगा कि माता पिता का प्यार केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा भी है। तो दोनों तरफा ये समझना पड़ेगा। महंगे उपहार देने से कभी रिश्ते नहीं बनते हैं, आपसी प्यार सम्मान देने से वो रिश्ते कायम रहते हैं। लेकिन प्यार से पूछा गया एक सवाल कि आप कैसे हैं, सब अच्छा है, मैं आपकी क्या काम आ सकती हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, ये हमारे दिलों में जो दूरियां हो गई हैं उसे हम कम कर सकते हैं। तो हम तो हर बच्चे से, हर माता पिता से यही कहेंगे कि एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, अपने रिश्तों में करीबी लाएं, है ना, दूरी नहीं लाएं।
1: बिल्कुल। और अभी हम अपने श्रोताओं को और करीब लाते हैं एक प्यारा सा गीत सुनवा।

0: हाँ तो बहुत ही पुराना गीत और बहुत ही प्यारा गीत है
1: वो जो मेरा क्या नाम रे
0: नदी किनारे नाव रे, क्या मतलब पुराने गीतों की बात करें तो सुनते ही रह जाते हैं।
1: मतलब अपना पूरा पता भी तुमने बता दिया कि नदी किनारे गांव
0: बिल्कुल। और हमारे भी जो श्रोता है, हमने उनसे भी कहा था कि उनके गांव में कौन कौन सी लोकोक्ति प्रचलित है, उन्हें हमारे साथ करना भी है।
1: जी हाँ,
0: तो अभी हमारे श्रोता लिखते हैं आरती कि माता पिता और बच्चे व्यस्क संतान जो है उनके बीच बढ़ती दूरी का मुख्य कारण भावनात्मक अलगाव, विचारों का अंतर और संवाद की कमी है। जीवन शैली और उम्मीदें पुराने समय से काफी अलग हैं। बच्चे अब केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक शांति और बराबरी का सम्मान चाहते हैं। कई बार माता पिता बच्चों की भावनाओं को समझे बिना उन्हें नियंत्रित करने या बार बार सलाह देने लगते हैं, जिससे बच्चे हस्तक्षेप या अविश्वास मानते हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनकी बात माने बिना किसी बिना रोक टोक के सुनी जाए, लेकिन कई बार माता पिता अपनी पुरानी बातों या अपने संघर्षों का हवाला देकर बच्चों की बात को अनसुनी कर देते हैं। तो माता पिता अक्सर बच्चों को यह याद दिलाते हैं कि उन्होंने उनके लिए कितना त्याग किया है, जिसे नई पीढ़ी ऐसा नहीं मानकर माता पिता का प्राथमिक कर्तव्य मानती है। डिजिटल और अत्यधिक व्यस्त जिंदगी, गैजेट्स और भागदौड़ वाली जिंदगी ने भी परिवार के सदस्यों के बीच के वास्तविक संवाद को बहुत कम कर दिया है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी होने के बाद बच्चे अक्सर है वो डिप्रेशन, अकेलेपन और एंजाइटी यानी घबराहट के शिकार हो जाते हैं। जब बच्चों को घर में भावनात्मक सहारा नहीं मिलता तो वो बाहर सहारा ढूंढते हैं और कई बार गलत दोस्तों या व्यसनों की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये दूरी भविष्य में बुढ़ापे में माता पिता की उपेक्षा का कारण बनती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों का ताना बाना बिखर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बच्चों और माता पिता के बीच बढ़ती जो दूरी है वो एक आम समस्या बनती जा रही है। इसके मुख्य कारण, इसे कम करने के उपाय बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं कि पीढ़ी का अंतर है, संवाद की कमी है, डिजिटल लत है, व्यस्तताएं हैं, स्क्रीन टाइम शेयर करते हैं, मोबाइल की लत के कारण बच्चे भावनात्मक रूप से माँ बाप से कटते जा रहे हैं। और इस दूरी को कम करने के उपाय भी कहते हैं कि आप जो है बच्चों की बात को बिना बीच में काटे तुरंत बचाव की मुद्रा में आए, सुने, उनकी भावनाओं को समझे, उनकी सीमाओं का सम्मान करें, दोषारोपण छोड़ें और समय और बदलाव को अपनाएं। ये जरूरी है, तभी जाकर ये दूरियां थोड़ी सी पाटी जा सकती हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जिन परिवारों में माता पिता के बीच लगातार झगड़े या तनाव का माहौल रहता है, वहाँ बच्चे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे माहौल से बचने के लिए वो बाहरी दोस्तों या डिजिटल दुनिया की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर माता पिता बच्चों पर डॉक्टर, इंजीनियर या टॉपर बनने का भारी दबाव डालते हैं। उनकी अपनी क्षमता या पसंद, जैसे किसी को आर्ट पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, तो उसको नजरअंदाज करने और हर समय दूसरों से तुलना करने के कारण बच्चे मानसिक तनाव में आ जाती है और अपने माता पिता से कतराने लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जरूरत से ज्यादा बच्चों को कंट्रोल में करने की जो माता पिता की आदत है ना, वो भी जो है बच्चों को एक समय बाद दूर कर देती है। बच्चे अभी तो क्या होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, बाद में जब उन्हें मौका मिलता है तो वो दूरी बना लेते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर और संवेदनशील विषय है। अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं, उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, वे कई बार ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं।

0: बेशक हर पीढ़ी की सोच अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना जरूरी है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक माता पिता ही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर एक विश्वास को लेकर आना। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं यानी कि कोई काम में, कोई पढ़ाई में, कोई कोचिंग में उलझे हुए हैं, और घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और गेमिंग में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपसी संवाद जो है वो खत्म होता जा रहा है। नई पीढ़ी के विचार, उनका पहनावा, करियर के चुनाव और जीवन जीने का तरीका पुरानी पीढ़ी से काफी अलग है। जब माता पिता पुरानी सोच या पुराने नियमों को थोपने की कोशिश करते हैं तो बच्चे खुद को असहज महसूस करने लगते हैं और उनसे दूर होने लगते हैं।
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम माता पिता को दूर करके बाहर कहीं भगवान को ढूंढने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु देखा जाए तो माता पिता ही भगवान रूप में हमारे घर में विराजमान है।
1: बिल्कुल,
0: उनकी सेवा अगर हम करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा और आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, कभी करके तो देखिए, ये लिखते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं के कारण उलझे हुए हैं, घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय जैसा कि अभी आपने कहा इन्हीं विषयों पर बातचीत भी करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, श्रोता जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे बड़ा मुद्दा है। बच्चे के पास बैठकर बातें भी नहीं करते हैं, वो अपने मोबाइल, वीडियो कॉलिंग, चैट पर ही लगे रहते हैं। माता पिता अपने अपने व्यवसाय में चले जाते हैं। हमारे यहाँ जब से पापा की मृत्यु हुई तब से भाई और बहन माँ के पास ही रहते हैं, और मतलब मम्मी नजदीक ही रहती है, कोई फोन आया तो तुरंत उसका जवाब देते हैं। हमारा तो फोन टूट गया, इसलिए बहन के फोन से ये संदेश साझा कर रहा हूँ। असल में जो इतना मतलब वो फोन बता रहे हैं उनका गिरा तो उसका डिस्प्ले चला गया। तो माता पिता अगर किसी के हैं साथ में तो बच्चों को उनके साथ बातें करनी चाहिए और मतलब उनको अकेले उस पे नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे दिल से दूर नहीं होते, दूरी होती है काम के कारण, क्योंकि उन्हें अपना काम धंधा संभालना होता है, जिंदगी चलानी होती है। और एक बात है कि माता पिता बच्चों पर जरूरत से ज्यादा पाबंदी लगा देते हैं या उनके जीवन के हर फैसले को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव है और उन्हें घुटन महसूस हो सकती है। इसलिए उन्हें उच्च विचारों से भरे पंख लगाकर उड़ने के लिए एक विशाल गगन में आजादी देने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, और माता पिता ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर संवेदनशील विषय है, और अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बनाने लगते हैं। उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, वो कई बार ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना आवश्यक है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक जो है उनके माता पिता ही हैं। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि माँ बाप ने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, अब जब उनके कदम धीमे पड़ने लगे तो उन्हें अकेला ना छोड़ें, उनका हाथ थाम कर कुछ दूर चल लेना भी प्यार जताने का बहुत सुंदर तरीका है।
0: बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को उठाया और ये साबित कर दिया कि माता पिता और बच्चों को आपसी तालमेल और समन्वय रखना कितना जरूरी है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आरती, अब वक्त है एक अंतराल का।
1: बिल्कुल, अंतराल लेते हैं।

0: हाँ तो आरती,
1: अब हम बात करते हैं पद्मश्री की, जो सेगमेंट हमारा है उसमें हम बात कर रहे हैं बीरूबाला राभा जी की। देखिए मंदाकिनी जी, समाज जो जो समाज सेवा होता है ना, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती,
0: बिल्कुल
1: है ना। और मानवाधिकार जो यानी उसके लिए कोई काम करता है ना, तो समझिए बहुत ही बड़ा वो अच्छा काम कर रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: ऐसे ही थी बीरूबाला जी।
0: बीरूबाला जी की आज हम बात कर रहे हैं। तो बीरूबाला राभा जो है असम की एक महान समाज सेविका और मानवाधिकार कार्यकर्ता थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के खिलाफ प्रचलित बहुत सी कुप्रथाओं, अंधविश्वास और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अत्याचारों को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था।
1: बिल्कुल। और जिस समाज में किसी महिला को दुर्भाग्य या बीमारी का कारण बताकर प्रताड़ित किया जाता था, वहां बीरूबाला ने साहसपूर्वक लोगों को जागरूक किया और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास किया।
0: हाँ बिल्कुल, उनका जन्म 1954 में असम के गोलपाड़ा जिले के ठाकुरविला गाँव में हुआ था और उनका संबंध जो है राभा जनजाति समुदाय से था। तो उनका बचपन जो है आर्थिक कठिनाइयों के बीच में बीता। जब वो लगभग 6 वर्ष की थी तभी उनके पिता का निधन भी हो गया था।
1: बिल्कुल। और परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। औपचारिक शिक्षा अधिक आगे तक नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन जीवन के अनुभवों ने उन्हें समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी।
0: हाँ, बचपन में ही उन्होंने गरीबी, सामाजिक रूढ़ियों और महिलाओं की सीमित स्वतंत्रता को बहुत करीब से देखा था। तो बीरूबाला का जो विवाह 15 वर्ष की उम्र में हो गया था, उस वक्त 15 वर्ष की उम्र बहुत हुआ करती थी।
1: बिल्कुल।

0: और उनके पति किसान थे और उनके 3 बच्चे थे। विवाह के बाद उनका जीवन सामान्य ग्रामीण परिवार के घरेलू जिम्मेदारियों के बीच में बीता था।
1: और लेकिन एक घटना ने उनके विचारों को एकदम बदल दिया था और उन्हें समाज सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। और वर्ष 1985 के आसपास उनके जो बड़े बेटे थे धर्मेश्वर, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो इस दौरान एक स्थानीय झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति ने बीमारी को अलौकिक शक्तियों से जोड़कर भय पैदा कर दिया और उनकी और उस बच्चे के जीवित रहने को लेकर भी निराधार भविष्यवाणी की थी उसने।
0: फिर
1: और फिर उसके बाद बेटे के, लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं और उसका इलाज करवाती रही वो। तो इस भविष्यवाणी के जब के बेटे के ठीक होने के बाद जब वो ठीक हो गया अपने दवाइयों को लेकर के, तो बीरूबाला ने महसूस किया कि अंधविश्वास और झूठे दावों के कारण लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है कि लोग इलाज कराने के बजाय झाड़ फूको इन सब चीजों में लगे रहते हैं। तो यही घटना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उन्होंने तय किया कि वो लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करने और ऐसी मान्यताओं के कारण प्रताड़ित होने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए वो काम करेंगी।
0: बहुत बड़ी बात। अक्सर लोग जो है इसी में लगे रहते हैं कि किसी तरह की जो है अंधविश्वास और कुरीतियों के बातों में आ जाते हैं और जान भी गंवा देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो असम में कुछ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कुप्रथा के नाम पर महिलाओं को बीमारी, मृत्यु या फसल खराब होने या उनके अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए दोषी ठहराया जाता था। तो ऐसी महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार और धमकियां और हिंसा का सामना भी करना पड़ता था। आरती,
1: बिल्कुल, बहुत वो उस समय का जो समाज था बहुत में जकड़ा हुआ था।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और बीरूबाला ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी बीमारी या दुर्भाग्य के लिए किसी महिला को जादू टोने का दोषी ठहराना गलत है और बीमारियों के लिए वैज्ञानिक सोच और उचित चिकित्सा की जरूरत है, न कि अंधविश्वास की।
1: बिल्कुल। और उनका संघर्ष आसान नहीं था क्योंकि लोगों की सोच बदलना बहुत मुश्किल होता है। कोई चीज को आप चीजों को बदल सकते हैं लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल सकती,
0: बदली जा सकती।
1: तो बहुत ही मुश्किल था उनका संघर्ष। उन्हें सामाजिक विरोध, अपमान और धमकियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें भी कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी, उस कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी उनको, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करती रही और संकट में फंसी महिलाओं की मदद करती रही।
0: बीरूबाला ने अपने गाँव में महिलाओं को संगठित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और मिशन बीरूबाला नाम के संगठन की शुरुआत भी कर दी। और इस संगठन में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, वकील और पीड़ित महिलाओं की भागीदारी रही। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या थे? महिलाओं के प्रति कुप्रथा और अंधविश्वास के विरुद्ध जन जागरण जगाना।
1: बिल्कुल। और झूठे आरोपों से पीड़ित महिलाओं की सहायता करना, जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षा और न्याय दिलाने का प्रयास करना, गाँव में वैज्ञानिक सोच और मानवाधिकार के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस देना, उनके प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली और समाज के अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़े जिनकी वो सोच बदलने में कामयाब हो गई, तो उन्होंने भी इससे जुड़ना स्वीकार किया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और बीरूबाला रंभा राभा ने संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक, जो डायन कुप्रथा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने में योगदान दिया। कैसी कैसी कुप्रथाएं थी।
1: बिल्कुल।
0: और स्त्रियों को कितने अत्याचार सहने पड़ते थे आरती।
1: जी।
0: और 2015 में असम सरकार ने असम विद हंटिंग जो है एक्ट जो है पारित कर दिया था।
1: बिल्कुल। जो ये विच हंटिंग और प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट जो था ना, बहुत मील का एक पत्थर माना जाता है। बिल्कुल। उसकी वजह से बहुत सारी चीजों में महिलाओं को बचाव मिला कि जो उस समय उनको जान से कभी कभी हिंसा का भी सामना करना पड़ता था। और इस कानून का उद्देश्य किसी को भी डैन बताकर कुछ कुप्रथा का नाम देकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने, बदनाम करने और उसके विरुद्ध हिंसा करने जैसी गतिविधियों को रोकना था इस कानून का काम। और ये कानून वर्ष 2018 में लागू हो गया और बीरूबाला और उनके सहयोगियों के लंबे अभियान ने इस सामाजिक समस्या को सार्वजनिक चर्चा और कानूनी सुधार के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
0: बिल्कुल सही कहा। जब कोई कानून आ जाता है तो उससे बहुत ज्यादा जो है फायदे जो हमें दिखते हैं वो दिखने लगे उस दौरान। और उनकी प्रमुख सम्मान और उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो 2015 में उनके सामाजिक योगदान के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिली।
1: और वर्ष 2018 में उन्हें विमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन का सम्मान मिला। 2005 में महिलाओं के अधिकार और अंधविश्वास के विरुद्ध उनके संघर्ष को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क नामक महिला संगठन ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के नामित भी किया था, नामांकित किया। और इन सब के साथ भारत सरकार ने उन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया।
0: क्या बात।
1: और फिर लेकिन 13 मई 2024 को गुवाहाटी असम में लंबे समय तक वो बीमार पड़ गई थी और बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया। और उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल उच्च

0: शिक्षा या आर्थिक शक्ति आवश्यक नहीं होती है, संवेदना, साहस और दृढ़ संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: सबसे बड़ी बात कि उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और आर्थिक रूप से भी वो मजबूत नहीं थी। ग्रामीण किसान के परिवार में वो उनका विवाह हुआ था, लेकिन उनमें संवेदना ही थी, साहस था और दृढ़ संकल्प की जो शक्ति थी उसने उन्हें पद्मश्री तक पहुँचाया और वो महान करने वाली महिलाओं में शामिल हो गई।
0: बिल्कुल।
1: और अब एक गीत सुन लेते
0: हैं।

0: हाँ मंदाकिनी जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ लोकोक्तियों की जो ग्रामीण अंचल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
1: अच्छा, हमारे श्रोताओं ने लिखी
0: बहुत सारी भेजी हैं, बहुत सारी उन्होंने एकदम भर भर के भेजी है। अच्छा। तो हम लेते हैं श्रोताएं उनका लेते हैं कमेंट। तो लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में रची बसी लोकोक्तियां बड़ी ही बेमिसाल हैं, और यहाँ हमारे यहाँ तो डांडिया नृत्य का पंडाल लगा हुआ है। जैसे कि एक है, उन्होंने लिखा है, एक है बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बाप ने मारी मेंढी बेटा तीरंदाज, मतलब इस तरीके की कहावत जो रहती है लोकोक्तियां वो है। और एक मारवाड़ी कहावत है, एक हमारे जो श्रोता है लिखते हैं कि जीना रा मर जा बादशाह रुलाता फिरे बजीर, अर्थात जब घर का मुखिया का ध्यान हो जाए तो परिवार बिखर जाता है, मतलब उसका ये कहना है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि मालवी भाषा में कहावतों को केवाड़ा या ओखाड़ा कहते हैं। मालवा क्षेत्र के लोग साहित्य

0: और आम बोलचाल में इन केवाड़ों का बहुत बड़ा और समृद्ध भंडार है। मालवी केवाड़ा के कुछ उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे कि आंदा के आगे रोणों ने अपना दीदा खोना, यानी किसी संवेदनहीन व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोकर समय बर्बाद करना।
1: अच्छा।
0: है ना, एक लिखते हैं, आंदो उठे ने घर का ने कूटे, अपनी परेशानी में अपने करीबियों या स्वजनों को जो तंग करता है, और आंदो कुकड़ो घट्टी दोरो, किसी एक ही जिद या काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, और एक लकड़ी के दो बटका यानी आपस में फूट पड़ना या परिवार का विभाजन हो जाना।
1: अच्छा, तो काफी मतलब अनसुनी सुनी
0: भी
1: नहीं है।
0: ये हमने नहीं सुनी है, वाकई आपने बहुत अच्छी लोकोक्तियों को हमारे सामने रखा है, क्योंकि हम ये तो कुछ चीजें तो हमारे यहाँ भूली जाती है, लेकिन आपने जो अभी कहावतें लिखी है वो शायद हमने नहीं सुनी है, है ना?
1: जी, तो हमारे एक और साथी है जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी लोकोक्तियां बोली जाती है, लेकिन ये लोकोक्ति बहुत प्रचलित है। चैत मीठी चीमरी, बैसाख मीठो मट्ठा, जेठ मीठी डोबरी, आषाढ़ मीठो लटा। इसका अर्थ है कि चैत में ककड़ी यानी चिमरी, बैसाख में मठा यानी कि छाछ, और छाछ जेठ में महुए की डोबरी, और आषाढ़ में महुए का लाटा सबसे मीठा और उत्तम लगता है। बिल्कुल ही अनसुनी ये भी नहीं
0: थी। वही छोटा लिखते हैं कि ग्रामीण लोकोक्ति केवल कहने सुनने की बातें नहीं बल्कि पीढ़ियों के अनुभवों का सार है। इनके माध्यम से बुजुर्ग बिना लंबा उपदेश दिए बच्चों को जीवन की बड़ी सीख दे देते हैं, और इनमें हास्य भी है, व्यंग्य भी है, सीख भी है, और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की सीख भी होती है। बहुत सी मशहूर लोकोक्ति इन्होंने लिखा है, गई भैंस पानी में, यानी किसी काम का बिगड़ जाना या मेहनत पर पानी फिर जाना, और ऊंट के मुंह में जीरा अपन कहते हैं ना, और घर का भेदी लंका ढाए, और दूर के डोल सुहावणे, अधजल गगरी छलकत जाए। ये सारी कविताएं जो लोकोक्तियां हैं वो इन्होंने बताई हैं।
1: बिल्कुल, एक हमारे और श्रोता जो लिखते हैं कि अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा न पाके, आंबा मतलब आम के पेड़ पर समय आने पर ही आम पकते हैं, ना बोलवा मना गुड़, मतलब चुप रहने में ही नौ गुड़ समाये हैं, और जाजा हाथ रलिया मणा, मतलब मिलजुल कर काम करने से काम जो है वो आसान और झड़पी होता है, नहीं तुरंत होता है, और टीपे टीपे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में बसी लोकोक्तियां अलग अलग प्रदेश की जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा न पाके, जैसा भी आपने पढ़ के बताया था, तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने लिखी है लोकोक्ति। और देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं,
1: और साथ ही हमें एक श्रोता जो लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकोक्तियां होती हैं ये उनके यहाँ तो मतलब जो होती हैं, लेकिन जहाँ शहरी लोग हैं वो भी उनका बहुत बहुत उपयोग करते हैं, वो तो करते ही गाँव वाले, और वो इतनी अच्छी चीजों को सिखाने वाली होती है कि उसका उपयोग करने के बाद हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, और बहुत सी चीजों को हम कम शब्दों में कहना सीख जाते हैं, और शब्दकोश भी होती है ये, जिससे शब्दों का भंडार हमें मिलता है, तुम्हें बताया कि कैसे कैसे उसका उपयोग होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। वो एक श्रोता लिखते हैं कि आगे नाथ जानवरों के मुंह में लगाए जाने वाली जो रस्सी है, न पीछे पगा से गाय बैल को बांधा जाने वाली रस्सी, ये आज भी गांव के घरों में उपयोग होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों से स्वतंत्र है या परिवार में इनका कोई नहीं है, यानी आगे नाथ और न पीछे पगा, इनके परिवार में कोई है, कोई नहीं है, ये अकेले हैं, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। बिल्कुल नई लोकोक्ति है ये हमारे लिए।
1: और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि गांव की चौपालों और रोजमर्रा की बातचीत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इन लोकोक्तियों का, और खेती किसानी और मौसम से जुड़ी हुई ये कहावतें हैं, ये लोकोक्ति हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, कृषि को सबसे उत्तम कार्य, व्यापार को मध्यम, और नौकरी को अधम या सबसे पीछे माना गया है, और इस लोकोक्ति के अनुसार। और अब पछताए होश का जब चिड़िया चुग गई खेल, घाघ ग्रामीण जीवन में मौसम और कृषि को लेकर काफी कवि घाघ की कहावतें बहुत रची बसी हैं। जब बरसेगा उत्तरा नाज न पावे पुत्रा, यदि उत्तर में नक्षत्र में बारिश हो, उत्तर नक्षत्र में बारिश हो तो अनाज इतना होता है कि मतलब कुत्ते मेले की जानवर भी नहीं खा पाते हैं, और भैंस के आगे बीन बजाय भैंस कभी पगुरा, ये तो सभी जानते हैं।
0: तो बहुत अच्छी कहावतें हमारे लोकोक्तियां जो है हमारे श्रोताओं ने हमें उन नई लोकोक्तियों से परिचित करवाया है, जिनका प्रयोग हम कम से कम शहरों में नहीं करते
1: हैं।
0: तो अब एक गीत सुन लिया जाए,
1: सुनते हैं।

0: भी कोई माने या ना माने, आरती तुम्हारी त्वचा तो बहुत ही चमकदार लगती है मुझे।
1: तो हम बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे हमारे लिए नुस्खे लेकर आए हैं घरेलू, तो हम ले लेते हैं उनको। हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि कच्चे दूध में शहद मिलाकर लगाना, इससे भी त्वचा में निखार आता है। और मसूर की दाल को दूध में भिगाकर और इसको पीस कर पेस्ट कर पर चेहरे पर मास्क की तरह लगाएं तो उसे बहुत फायदा मिलता है। और बहुत सही लिखा है इन्होंने, ऐसा मैंने आजमाया भी, बहुत अच्छा नुस्खा है उनका।
0: अच्छा।
1: तो गरबा में बिल्कुल आप ही आप दिखाई देंगे मंदाक मुझे।
0: तो मैं भी आज इस नुस्खे को
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: गरबा में जाकर नृत्य करती हूँ। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एलोवेरा जेल जो है, ताजे एलोवेरा के पत्ते से जेल निकालकर सीधे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें, त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और नई कोशिकाओं के विकास को भी बढ़ा देता है। और बेसन और हल्दी का पैक भी लगा सकते हैं, बेसन चुटकी भर, हल्दी, थोड़ा सा गुलाब जल या दूध मिलाकर पेस्ट बनाए और इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाकर सामान्य पानी से धो लें और ये नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। लेकिन हल्दी को लगाने के बाद क्या है, हमें थोड़ा धूप में कम जाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे जो साथी लिखते हैं कि 1 चम्मच फिल्टर कॉफी, 1 चम्मच दही में 2-3 बूंदे नींबू के रस की डालकर अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इस पेस्ट को चेहरे पर गर्दन पर लगाइए, थोड़ा सा सूखने पर हाथों से मसाज करें और पानी से धो ले, त्वचा साफ सुथरी हो जाएगी। और साथ में एक और दूसरे हमारे श्रोता है उन्होंने लिखा है कि मुल्तानी मिट्टी जो बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छी होती है, मुल्तानी मिट्टी हल्दी दूध दही बेसन नींबू पपीता संतरे के छिलके त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इनसे कई तरह के उपकरण बनाए जाते हैं, फेस पैक बनाए जाते हैं। तो इन्होंने बालों के लिए भी बता दिया कि रीठा शिकाकाई और आंवला बहुत लाभदायक होता है। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेके भेजे,
0: बहुत अच्छी बात है। तो सभी को हम शुक्रिया कहते हैं और एक आखिरी गीत और सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: दिल दे के देखो। मैं दिल तो दिया हुआ है हमने, मंदाकिनी जी को भी दे रखा है और साथ ही अपने सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को, सखाओं को दे रखा है।
1: बिल्कुल, और तुम्हारा दिल भी हमारे पास है। तो अब इन्हीं बातों के साथ जो है कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
0: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation five major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े. लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है. आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं. इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे.
0: Prime Minister Modi interacted in New Delhi today with members of the Indian contingent that participated in the 2026 Asian Games concluded in Japan earlier this month. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi described the recent Asian Games as memorable for India, highlighting the outstanding performances of Indian athletes across several sporting disciplines.
2: साथियों, इस बार Asian Games कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे. हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है. क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है. कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता. इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल.
0: India finished fourth in the medal tally at the Asian Games held in Aichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The Ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The government today said that India's merchandise exports to the United States rose to around $51 billion during April to September this year, despite tariff-related disruptions. Commerce Secretary Rajesh Agarwal said that negotiations for the proposed India-US trade agreement are moving in the right direction, with both countries working towards concluding the deal at the earliest. The Supreme Court has issued notice to Congress leader Rahul Gandhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। कहा, देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया, भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूर संचार विभाग ने सभी दूर संचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूर संचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है, उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखा

0: दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों के लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
2: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम इस दृष्टिकोण को कैसे कार्य जा रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक LPG उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को

0: खराब हुआ जो पहले पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी। सरकार देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10 करोड़ 56 लाख से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
1: वी इंट्रोड्यूस द गिव इट अप कैंपेन seeking the cooperation of the public in voluntarily giving up cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
0: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
2: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती थी। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
0: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाली खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि पूर्ण संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
4: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम ने तो गोल्ड लाकर 44 लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार जीता है और जहां परमेश्वर शूटिंग प्रदर्शन 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता ये बहुत है।
3: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बढ़ा।
3: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
6: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से साय 5 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
3: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।